Bisisa na megu dwe te bari sa ji sotos kon he saso ta ya wo ye bari khala gu ye tara hepatitis ya bari ra sa uli ji sa khala gu ya na chungu madu la ane samsare je na sna dhyana 13 lakh manu tala tho dwe na har ek barsa china chungu du ale college re cancer college ya jun college re sai shi jura ma ke cancer ji ki ta sai hepatitis ya virus sa sai mukhe bhumika mide gu ye अले तो हेपाटाइटिस तुर्की छुई जुई रासा जीगु शी वो चाहिए एकदमे मना वही अले ओके जाय आप हमें को अने हेपाटाइटिस ताऊ चाहिए न्याव प्रकारी दे खनी का ए बी सी डी ई तो क्या चाहिए बी ओ सी चाहिए अपो कॉमन खनी बी ओ सी बती सा कॉमन खनी म्यो अज ज्ञान तो खनी का म्यो प्रकारी हेपाटाइटिस तुर्की चाहिए मनु तो चाहिए मायुप्री संभावना कम है जीगु खनी अले तो हेपाटाइटिस खला बले चाहिँ न चाहिँ दाइ कॉमन डेट हेपाटाइटिस थर्ड जो रगाय छि म को मलाई वो कारण चाहिँ मिमे बिन्द सरे जी अझ अपोइना चाहिँ जे स टेस्ट मा एबी आई बिलीव मस्त अले बच्चा सीमांत कृत मलाई टेस्ट या मफुपी समुदाय बिन्द चाहिँ अपो हेपाटाइटिस भइगु खनिका अझ लागू पदार्थ यो दुर्व्यसनी एचआईभी संक्रमित मनुतेता चाहिँ अझ अपो हेपाटाइटिस जेगु ज्याछन अले हेपाटाइटिस बी जुपी चाहिँ लगभग 90% मनु त अलि हेपाटाइटिस सी जुपी लगभग 80% मनु त्यसमा चाहिँ थर्ड लुई जुर खाए सीमको एचआईभी ढुङ्गा चाहिँ दक्ले घातक लुई यो रुपे चाहिँ हेपाटाइटिस या त क्या गुया एजिया र थो हेपाटाइटिस दी या बारे खला द हेपाटाइटिस बारे खला त न थोङ्याको दी त बुझुल जेगु कलेज वा सी चाहिँ लगभग जेगु शरीर या 500 सिबेन अपो महत्वपूर्ण जाय अलि बिचान दिसा 500 सिबेन अपो प्रकारिय जाय अञ्चंगु सी यदि मना वल्दा समझ जाय फेम को अलि ओके संपूर्ण शरीर हे असर जुइला एजा एकदमै याद हे मागु विशेष सेना थो बरखाइले सिक्पि सजाय लाला थायु ल तना दिले कि अथ थो चिकौ पाखे न सरज जुइरगा दाइ मलाई चिकौ रे ओ संक्रमित सोजिया जुइ सायद या सा पिने चाहिँ बालाको देका मतगु खाना नलकी अलि ल पाखेन संक्रमित जुइयो थ्वे बारे भतिजा जिस खाना बला या अले छिट छुन प्रकारी थो हेपाटाइटिस थियो जिन धारु न कलेज तो चाहिँ मना बेकी को खम होला अले छुन प्रकारी पहिला पहिला यु न जस्तै या स्वित अछि रे हेपाटाइटिस जु खसा न वो हेपाटाइटिस जु म मनु न इले बेले टेस्ट या मा अले न पथों को ने हान नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रका चाहिँ यो कुस्ते जसो मुदुमला नाप नाप सा एला तुनी पिन्द जका फैटी लिवर जु लरका जिगु तर थोंकनी को खानपान विशेषण मस्ते मचाबलेन से जुन छिनी अपोडु चीज त नै निसा सामान त नै मतलब नेउ खाना त नै वो कारण न मस्ते त न फैटी लिवर जिगु क्रोन चाहिँ त कहि अपयोग न सम्बोधु एजिया पति स अलर्ट ज्या दिस यदि छि मचा यो को लोठे तास छक चाहिँ लिवर फंक्शन टेस्ट गर्दै एलएफटी गर्दै मतलब एलएफटी टेस्ट यागु बालाजी त्यसै जजसा मेसवा केना

Agno la sukusa di pa dunka jazo ni pa le san pa le jazo chenye na chona dila jazo na padu jirash mila le jazo sa awungu aitwa minga jugo sabu jazo ya khote yela ese yela niwas samas daga se gochan jugo jula to se thani a peda kya na peda nyo yela ya thi thi jat jati tamuna anugulina niwate bije jati sanstha ta duni odoko sanstha ta sathaya chani mala niwate go lagi jaya ta wathagu sanskriti eta link ta daga se ana chago Lazuce, Suri Zain, Jingungu, Zati, Puchatamuna, Ali Azahana, Pingu, K, Tapes, Yasem, Tombale, Kodiv, Ani, Sungutanam, Lani, Sungu, Zati, Kolaputa, Abaduzia, Yella, Nivasamas, Gotanjugula. Ale, okay, Swada Funapi, the Kingulasta, Sukogu Palistadi, Honigusagudia, Loga Kyoya, Saza, Party Palace, Ezula, Ale, Anase Bagmati, Pradesia, मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया वे कसे मु पाह कथा थिंगु वजाजो स बागमती प्रदेशया योकोहे सांसद पिन अन थिंगु जुल विशेषना चा येलो जिल्ला पाखे प्रतिनिधित्व याना थेना छपि नेवा सांसद मि योको थिंगु जुल अधे येलो जिल्ला या विभिन्न राजनीतिक दल या सभापति पि संयोजक पि वे कपिन थिंगु जुल सा येलो महानगरपालिका या उपप्रमुख जुन थिंगु जुल अले नेवा दिए दबुया नायो रश्मिला प्रजापति न थिंगु जुल वजाजो स अले हले नेवा दबुया नायो रमेश मनिकार नथे न अथे यो कुयो कुहे अन आजादी खला पुसा पाखे बिबले ला यो कुय मन्त छु जुल अले अन दकले नेपु को दकले बा लागु चाहिँ दतागु ज्याझो यो सुरुवाते छु अन वज्र योगिनी पेख तल मला आ वज्र योगिनी ढिउला छु आधा नेवाते को बिचे तस्क हे व लोक भागो जिरु ल थपने चर्या पेख अले छु द चाहिँ बिस्को तागु चाहिँ अन खड्गी समाज पाखे नाखी बाजो थाना अन चाहिँ पेख छु चाहिँ तलमल व चाहिँ तस्कय नुगु तल साथ जी चाहिँ आतको मखने नाखी बाजा वा जस्तै रैली मखला व मेरा मेरा चाहिँ खन सङ्गु तर नाखी बाजा यो ताले प्याख हुगु चाहिँ दक्ले नपा खङ्गोले हानुगु नाखी बाजा छिमेसी व पुजा गर्न जी लेखन मन लेखन मखला प्याख लु पि चाहिँ पिम मिसापि अले छिमेसी व पुजाले अन तस्क नच नचा पि चिचिर गपि मस्त न उके चाहिँ इन्भोल मखला तर गुली जोस नक्स चाहिँ बेकअप सँग बाजा थाना दिल ओन छौ नेवा समाज छगु एसेप्ट जुल नेवा समाज छगु व चाहिँ पहिचान जुल छ नि हामीले चाहिँ धिमे बाजाउँ छ थाना धिमे यो बोले पेखाउला छ ख पढे थे मलाई आज चाहिँ नाखी बाजाउँ यो बुटी बोले न जुल अले अन आ अन ज्याजोले छुन खसी दल लगाए दे आइमा नया भाजु नातिकाजी सक्यो वे कल धयादी कथा चाहिँ भुख्या बे ढुङ्गा दक अपराइ थे देव चाहिँ अब पुनर्निर्माण जुल तर बुङ्गो देव यु देव चाहिँ पुनर्निर्माण म जुल छु छु पनि एजिया व ज्याया त येला निवास समाज चाहिँ थ नेतृत्व कासे 80 लाख करिब 80 लाख ता बुङ्गा बुङ्गो देव यु बि देव गन पुनर्निर्माण यानाको खन बेक अप सकना दिला ने नाप येला निवास समाज या थगु हे भवन दे के त थुसी बागमती प्रदेश सरकार पाखे 35 लाख देवा अन तैबियो को खन अन जानकारी बिल विशेष न चाहिँ माननीय रामकृष्ण चित्रकार जो खन दे दिल अले अझ न मु पहान चाहिँ मु पहा मुख्यमन्त्री जो 35 लाख सको मरु मखु चिक पिसा ज्यान वन दासा जिमी को कार्यकाल आए मखला जिबे सन सांसद ज्या चोतले जिम सजा 1 करोड तक न बीफ तै गो थासे खलान दिल न्या सन्तोष कहे बालक जुल अले छौ ख चाहिँ छुरगा दैले विशेष न आथो मुख्यमन्त्री खलाबले गब एक न चाहिँ जि थगु नु खते दे दबे नायक थ थगु नु खते बले ओ खन तय हो जुल तर नाम कासे मुला तय हो जुल नापसे आदिवासी जनजाति महासंघ यु बडी ज्याझो छ चाहिँ थो सायद आदिवासी दिवस बेले ख आदिवासी दिवस बेले वे कल चाहिँ छौ ख दैदिको ख चाहिँ तस कहे विवाद जुलका ओ छु खलेर गादै बले आदिवासी आयोग या चाहिँ छुए ज्यामहरू थो आयोग आदिवासी आयोग निसे महिला आयोग म चाहिँ धोको डिजर्भ दियामा रहेको चाहिँ मुख्यमन्त्री खलाएको जुल मखला थो खास आदिवासी आयोग आदिवासी प्रतिष्ठान थोदै चाहिँ झी आदिवासी त मागो ख छ गैर आदिवासी देशौँ केही महत्त्व थुइ म हो तर न सार्वजनिक थासे हो या एक एना चाहिँ छ म जिम्मेवार हुन नभएको ठिक म जो ख हामी घन बेक्लौँ भटिस अजागुए मिङ्ग न अजागुए ख बेक्लौँ तैदिल थो जति लागि ख राजनीति या त मखु
जका राजनीति यात्रा पक्खान जाति संस्था मको तर राजनीति बुतिए मकैला से जाति संस्था पि मन देसो अटले मखनि समखलाइ जा तो बच्चा दुनी ठुके प्रष्टता चाहिँ मोदु थेन खन्दतक मुख्यमन्त्री यात खलाबले अन द चाहिँ तागोला जसे आथौ जि जाजो स थ बुख तयागो मेन ता दैगो चाहिँ येला निवास समाज तस्कहे बालक जैन चंगदु अजागो बुंगदयु देगासको दन्तसको मुख्य वेकअपसँग थगु छ दन्तना प्रयास रद्दु अलेना प येले दुनिया गुली न जातीय विविधता दु नेवादुनी ओ जातीय विविधता या त क घासे दोकुशी त छथै आया दोकुशीको समस्या मतलब दोकुशीको समस्या न छथै आया स्वित मालिबले चाहिँ ओ दोकुहे छक्लो हे ज्यागु जुन छगु वेकअपसँग चाहिँ कुत यान दिल तस कहे बालाको कुत वेकअपसँग याना सुना दिएको दु ओके लागि वेकअपिन त योको योको सुबे अलेना प सोकोगु पलिस्ता दिया यक्को यक्को तुनो गलानी से भिन्तु राप्ता से

दिपातुङ काख नलसको छ ज्याझो नेपाली छिङ्गेना छुना दिलो अरे जिगु नाख रश्मिला प्रजापति ज्याझोसा आमे बुख बाखे भने क्यानाडियन नेवागुथिया पुलाङ्गु व वर्तमान ज्यासना पुचाया भेला सम्बन्धी छगु बुखदु क्यानाडियन नेवागुथिया गुसाले गुथिया पुलाङ्गु व वर्तमान ज्यासना पुचाया दुज व सल्लाहकार ते छगु मुज्याझुल उंगु जुलाई 18 खुनु मिस सी सागाया पोर्ट क्रेडिट पार्के गुथिया पुलाङ्गु व वर्तमान ज्यासना पुचाया कार्यकारी बोर्ड या दुज व सल्लाहकार पिनिगु उगु मुज्या जुगु ख उगु मुज्याया उद्देश्य पुलाङ्गु व वर्तमान ज्यासना पुचाया दथि स्वापु क्वातुकेगु अनुभव काल बिलियागु नाप गुथि पाखे थौकने याना छुंगु गतिविधि क्रियाकलाप ज्याझो व भावी योजना बारे पुलाङ्गु नेतृत्व या त जानकारी बिगु जुगु कथ गुथि जानकारी बिगु जुल थुकियालिसे याक नहे जुगु नेपाली मेला व हिमालयन मेला क्यानाडियन नेवा गुथिया सहभागिता बारे न जानकारी बिगु ज्या जुगु ख थुक कथ हे सेप्टेम्बर 26 जुगु गुथिया थगु हे सांस्कृतिक ज्याझो समय बजिया तयारी या त कयान सहल जुगु ख नेवा संस्कृति व संस्कार दुने तसक महत्व जागु व प्रतीकात्मक परम्परा कथ कया तगु समय बजी ज्याझो गुथि थगु स्थापना काल निसे तसक उत्साहपूर्वक निरन्तरता बिया वया चुङ्गुदु मुज्या बुति कया दिपी पुलाङ्गु व नुगु ज्यास्ना पुचया दुज सल्लाहकार पिन्स थथगु अनुभव व सुझाव त काल बिलियागु ज्याझुगु खसा वर्तमान ज्यास्ना पुचल मध्यक गुहाली या त सही मार्ग निर्देशन व गुथिया ज्याझोले बुति कात गुली ग्वाली या गुलिन प्रतिबद्धता पुङ्कुगु गुथि जानकारी बिगुदु वैगु अगस्त आथे नेथन फिलिप्स स्क्वारे जुगु अठिन च्याकोगु हिमालयन मेला जुइत्योङ्गु दुसा उगु मेला गुथि नेवा संस्कृति व सम्पदा विषय बोझायागु तयारी याना चुङ्गु खन नियथम्बुदु आज साख्नु मेगु बुख पाख्यो भने आज चाहिँ सोकोगु अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकार सम्मेलन जुइगु बारे बुखदो सोकोगु अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन थोयो भएको श्रावण 24 निसे 27 गते तक यहाँ यात्रुङ्गुदु छगु नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिस व नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया मुङ्का गोसाले चङ्गु उगु मुज्या अथे निर्णय यागु ख ज्याझो फनिज्या गोसाले पत्रकार दबुया संयोजने सार जर्नलिस्ट फोरम अन ग्वाली यागु जुगु दु थौ थौ ढका धाय बले थोसै मिग चङ्गु जिल मिग चङ्गु मुज्या प्रारम्भिक योजना नाप कार्यक्रम बारे न कार्योजना निभएको जुल सम्मेलनले हलिङ्ग करिब 40 देश मातृभाषा पत्रकारिता याना छ पत्रकारिता सम्बोधिकाको अनुमान याना तगुदु पेनियङ्क जुगु ज्याझोले प्यानल डिस्कसन कार्यपत्र प्रस्तुति सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन नाप नेपाल पर्यटकीय थासेन अवलोकन याकेको ज्याझोदु सम्मेलन या मु मातृभाषा पत्रकारिता या विकास याना व्यवसायिक देखेको सरकारी नीति मातृभाषा पत्रकारिता या महत्व स्थापित याकेको व सम्मेलन नेपाल राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरे नेपाल मातृभाषा पत्रकारिता या उपलब्धि बारे न प्रचार प्रसार यागु जुइदका घोषा खलक धाको छ नाप भाषा लिपि संस्कृति संस्कार नाप सम्पदाय संरक्षण व अध्ययन अन्वेषण तक जुइ कथा सम्मेलन आज दु थो सोया निह निक तक नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया गोसाले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन जुगु ख सम्मेलन सार जर्नलिस्ट फोरम व फोनिज सहकारी यागु ख तयारी बैठक नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु पाखा इन्द्रपेन्द्रलाल श्रेष्ठ सुनिल महर्जन सुरेन्द्र भक्त के मानन्द राजु नापित प्रजित साके तेज नारायण महर्जन भोतिकाको खसा फोनिस पाखे लक्की चौधरी समीर बलामी अर्जुन बहादुर तामाङ प्रवीण श्रेष्ठ प्रदीप लेखी अमिर लामा राजु राजदेव प्रवीण किरातिपिस भोतिकाको ख थो समाचार छिपिन तथा चुनावले अलि थो जी फोटो नसुचना फोनिस व नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दौ या त छगो जिगो छाता छौ सल्लाह थुलिमासी नामे छमहे मिसापी जी नान बन्न मखन अथवा फोटे न मखन के मक्सा चाहिँ थो सोकगु मिज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन जिमाल के मक्सा मिसापिन दे भालेन छिपिनु समिति पक्का न मिसापिदु बेकअपिन त नछुछु भाला बिया सक्रिय यामाल याब्ले व नेतृत्व न मिज पिएजक बिगु मला छुन मेन निर्णय यामास मिज पिजकै चुना निर्णय यागु थो प्रक्रिया त कमिले मुजलो थो चाहिँ 18 शताब्दी या पजुल चिज चाहिँ 21 शताब्दी ख एजापति छिपिन सज थो पाखेन बिचायन दि त इनापेना तसे ज्याझोसजी मेगु मेथे

लिपाङ्गो तिपाङ्गो काठमा लसेको छ ज्याजो नेपाले ज्याजो छिङ्गेना सुना दिल ज्याजो सदुजी रश्मिला ज्याजो साहाकमा मेगो बुखते आज तलेजु भवानी या पलाङ्गो तिसाली त हेगो बारे छगो बुखन्दो तलेजु भवानी या खुयायङको गो छिनपेङ्गु शताब्दी पुलाङ शताब्दी या पुलाङ्गो ऐतिहासिक तिसाली त हे त अमेरिकी सरकार या प्रतिनिधिले से कुटनीतिक कुत सुरु जुगु दु यी महानगरपालिका या कार्यवाहक नगर प्रमुख सुन्दा डङ्गोला नेपाल नीति अमेरिका या कार्यवाहक राजदूत स्कट अरबम नापलाना तिसाली त हेगो कुत सुरु याना दिल डङ्गोल धया दिए कथा यी पाखी खुयायङका विदेश या संग्रहालय थिङ्गुगु पुरातात्विक महत्व दुगु कानुनी व कुटनीतिक प्रक्रिया पुवङका थगु हे देशेली त हेगो अभियान ज्याचुङ्गु दु खलाबलाय झोले कार्यवाहक राजदूत स्कट अरबम तया दिगु जिज्ञासा डङ्गोल विधि पालना व मानव अधिकार प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध जुया नागरिक तेगु अपेक्षा आधारित योजना या त प्राथमिकता बियागु ख तया दिल तलेजु भवानी विशेषना निवास समुदाय इष्ट देवी लिसे मल्लकाल निसे या शक्ति शासन व समृद्धि या प्रति ख वेग क या त दैवी शक्ति व मातृत्व मातृशक्ति ख न पुजाए कर्नाटक वंशी जुजु कर्नाट वंशी जुजु हरिहर सिंह देव छिम पेङ्गुगु शताब्दी तलेजु भवानी या त नेपाल त हगु ख अनलिपा मल्ल जुजु तलेजु या त थगु राजे या प्रमुख संरक्षक व कुलदेवी कथा इतिहासे बने भई नेवा समुदाय या तलेजु भवानी या त तान्त्रिक विधि पूजा यही अले तलेजु देव या पुजारी ते त कर्माचार्य धाई तलेजु भवानी या पूजा परम्परा गोपेजी हनुमान धोका खोप व यलय तलेजु देव थन लोक वा उगु देव दे छक असिदेगु मोहन या महानवमी खुनु जक सर्वसाधारण ते त च्याकी उख आशा या ये महानगरपालिका यागु थोकु त पुवनी अले तलेजु भवानी या पुलाङ्गो तिसा लिते हे त सफल जी आज जो स मेगो बुख तन दनी जी चिहाक छगु मेगो बुख ते तेना व चाहिँ खड्गी समाज ये जिल्ला समिति या महिला विभाग नि सुंगो बारे जुल नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाज ये जिल्ला समिति या गोसाले काठमाडौँ महानगरपालिका या सांस्कृतिक भवने आइतबार महिला विभाग नि सुंगो दु समिति या ये जिल्ला या नाय पुष्पराज खड्गी नाय सुई मु पाहा मु नाय नन्दकिशोर साई त्वा देव च्याका उले जयाना जिल्ला सा संगीत आमाते खड्गी लस्कुस नोचु तया दिगु ख उगु ज्याजोले ये जिल्ला दुज सपना साई या संयोजक ते अनु साई विनीता साई पेमा तन्डुकार साई दिना साई लगायत नि ढेमेसिया महिला विभाग नि सुंगो जुल यो कोइगो बितुना छिक्पी सचाई तस्मा बालक ज्याया फेमा रकान आशा या नचना छिक बिन्त चाहिँ बिन्तुना बियाचना मिसापी नेवा मिस्त स्पेसली देहा खसा उली संगठित मजु खला खला पुच दैछु नि गुन मापुच अधका विशेषना चाहिँ थो ज्यापु समुदाय दुनी मापुच अधका अन यो कुरा चाहिँ ज्या चनिगु तर मेमेगु जाति दुने दासा मिसापी उली संगठित मजु दे दबु ए खला खसा दे दबुले न मिसा दबु अधका दु तर न मिसा दबुले जातीय विविधता हेतु चाहिँ तस्क थाकु चंगु दु दोको जातीय पि दु थ्याके त सुरी जिमी सन् जि चाहिँ संस्थापक नायन जुल जिमी सन् सुरी चाहिँ पुत यानगु नेवा दे दबुले गुली न जातीय खला पुच त स्वा ख वे कपि सकलसित पौछ या जि सन् यान भले तस्क मसक न नेवा मिसा पि थेन ले आतक न वे क्रम ज्या चंगु दु एजा जि आशा या त खड्गी समाज या महिला विभाग ये ये जिल्ला समिति महिला विभाग वे कपि चाहिँ तस्क सक्रिय रूप ज्या आफेमा दक्कु नेवा मिसा तेगु लागि उदाहरण ने रूप चाहिँ यहाँ भने फेमा रकान कामना हुन्छ न आदकले लिपा हाक्न वंगु वाले हे जि यथनागो ख जि हाक्न सकरी पिटी आतेना आवेगु 24 गते श्रावण 24 गते अगस्त 9 ले चाहिँ हलि आदिवासी दि मतलब विश्व आदिवासी दि धका चाहिँ ला ले तुसी आदिवासी दि भले चाहिँ जि आदिवासी त दक्को छठ्या मुना छौ कथा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन या चाहिँ मागुरु छारका पछि नसन दया पहिला न विविध कथा चाहिँ आदिवासी आयोग अले अथे प्रतिष्ठान थ चाहिँ मागु मखु रका चाहिँ खवैगु ठुक्सी लाज प्रतिष्ठान खारेज यागु रका आयोग सरकार बाखे होला अले यकै डेलिगेशन त वना खारेज चाहिँ मयागु जुल तर छगु खछि पिसन सिके मागु खछुर गादैले
यदि प्रतिष्ठान खारेज जोसा जे आदिवासी न जुइमको मेबी सुनना आदिवासी जुइमको जे आदिवासी दगा सूचीकृत जुवा चोमले जीव अधिकार का दथुलि थाकु सम्बोधु कने प्रतिष्ठान खारेज जुल दासा नेपाली आदिवासी धापी मन त दासा जे स थगु ठ्याक गर्न माउनेको आगुलि न जे चाहिँ विशेषना बागमती प्रदेश निवास सांसद योको दुमला थथौ थास खुल्ला रूपमा न झापी नदु खुल्ला रूपमा त्यान उभि नदु अले तर अपराधी समानुपातिक चाहिँ आदिवासी जुगु ल्याख चाहिँ थियो पियोको दुला एजा ओख चाहिँ जिस एकदमै बिजायामा थिति पार्टी दुन्न आदिवासी या कोटा हे यो कोहे निवात न पार्टी या केन्द्र समिति थिना चंगु दु एजा प्रतिष्ठान खारेज सुना हालते जुइ मजु अले प्रतिष्ठान खारेज मजु के त थुक्सी या अन्तर्राष्ट्रिय थो आदिवासी दिवस खुनु चाहिँ जि सकल ज्यामा जि सकल निवात एजा छि कि सकल छि त जि एकदमै ला धन जोडे याना छि पिसा ला जोडे या खनि म पैसा ला जोडे याना जि इनापिया कि थुक्सी या विश्व आदिवासी दिवस तो खुला मञ्चे जुइ दुङ दु अले थो चाहिँ भ्रिकुटी मण्डप र्याली ध्याना खुला मञ्चे वइख 11 बजे भ्रिकुटी मण्डपे मुनि गुरगान हागुरु सिक्पि 11 बजे लासा भ्रिकुटी मण्डपे जाइदि स निवादे दबु नेवादेगु राष्ट्रिय संस्था ख निवादे दबु नेवादेगु संस्था जोजिया निवादे दबु नाप्टा मञ्चे पि र्याली जाइदि फु अनि लिउने हरा जासा जिर मला व तर खमक्त तर न्यासा न थिनमाल अले मखु परिचय लिबाई खसा छि डाइरेक्टर न खुला मञ्चे न थेंगा दिए फु न्यासा थुक्सी चाहिँ योक्क नेवात अन थिंके मागु तस कहे आवश्यकता दु वहे कारण निवादे दबुल थो ये यला खोप जग मख कि थो सोनी गली कया गुली न जिल्ला त दुमला जसे तहादिङ जुल नुवा कोट जुल मकवानपुर त मकवानपुर लबस ता पाहे स मकवानपुर अले काभ्रे सिन्धुपाल्चोक मला ज सिन्धुली त कन जि सजे समन यान्चना गजुल एजे आ वो जिल्ला पाखे से निवात योक्क संख्या वे तेमु दु छिपि थनिए सोनी गले चुनी पि निवातला झनिए थेन मागु तस कहे आवश्यक जुल छि दे दबली वा छुन जातीय संस्था आबद्ध जुइमा हे दैगु मधु खाली आदिवासी जुगु ल्याख नेवा जुगु ल्याख चाहिँ अनथेंगा दि त जि दुनु गलनसी इनापियासे थौ दकले लिपाङगु मे छबु शिव अथन भजन दगा दे हमाले ओम मे चाहिँ ते थो भजन चाहिँ विशेष सेना थ श्रावण महिना अपयना चाहिँ शिव या भजन हालेगु यही सक्षिया शिव खय ख मला शिव या वर्तना क्यागु यही तर जि वो कथा चाहिँ मखु थन छपु भजन के थेंग वला अमन कार्की जो चाहिँ थो चोया दिगु जुल अले थो रीता महर्जन अमन कार्की दगा छु तर अमन कार्की मखु अमन खड्गी ख गन्तक जिसु थो मे चाहिँ अमन कार्की चाहिँ तल अमन खड्गी चोया दिगु रीता महर्जन अले चिना दिगु अले रीता महर्जन ब दीप तुला दरे सले थोगु थो भजन द क्ले लिपाङगु थौ या मे कथा तेतेना ना पछि सकल पाखे जि उजन खने ज्याजो न्याना दिगुली यो कलिको सुबा

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिज गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।